0: जी, लिख रहा हूँ।
1: ठीक है, ठीक।
0: All 58 be clear and handy and boarding 109.
1: Copy, all units clear at 1643.